इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: tune in anywhere. Radio Man Bhavan 90.8 FM, always heart touching.
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही घना, विशाल और अंधकार से भरा हुआ जंगल है जहां रास्ता खोजना लगभग असंभव है, और उस भयानक जंगल में एक विशालकाय हाथी अपने ही लहर में मदमस्त होकर दौड़ रहा हो। वह इतना शक्तिशाली और पागल हो चुका हो कि रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकें, पूरे जंगल को तहस नहस कर दें। अब आप ही बताइए, उस पागल और बलशाली हाथी को काबू में करने का क्या किसी आम इंसान के बस की बात है? बिल्कुल नहीं। उसे सिर्फ वही नियंत्रित कर सकता है जिसके पास एक सही औजार हो और उस औजार को चलाने का हुनर भी हो। कबीर साहब आज हमें समझा रहे हैं कि हमारे भीतर भी 24 घंटे एक ऐसा ही भयानक जंगल और एक ऐसा ही मदमस्त हाथी खेल रहा है जो हमारी पूरी आत्मिक शांति को उजाड़ देता है। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह दार्शनिक सूत्र। काया कजरी बन अहे मन कुंजर मैमंत, काया कजरी मन अहे मन कुंजर मैमंत, अंकुश ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत। काया कजरी बन अहे

0: श्रोताओं, कबीर साहब हमारे अस्तित्व की आंतरिक संरचना को समझाते हुए कहते हैं, काया कजरी बन अहे। यह जो हमारा भौतिक शरीर और संसार है, यह और कुछ नहीं बल्कि कजरी बन यानी काजल का एक ऐसा घना और अंधकारमय वन है, जहां अज्ञान और वासनाओं की काली मां फैली हुई है। मन कुंजर मैमंत, और इस घने जंगल के भीतर जो हमारा मन है, वह मैमंत कुंजर यानी एक मदमस्त मतवाले और बेकाबू हाथी की तरह है, जो इच्छाओं के वश में होकर इधर उधर भटक रहा है और हमारी चेतना को अशांत कर रहा है। तो इस मदमस्त हाथी को काबू में कैसे किया जाए? अगली पंक्ति में कबीर इसका अचूक उपाय बताते हैं। अंकुश ज्ञान रतन है, जैसे हाथी को नियंत्रित करने के लिए महावत के हाथ में एक तीखा अंकुश होता है, वैसे ही इस मतवाले मन को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी रत्न एकमात्र अंकुश है। खेवट बिरला संत, लेकिन उस ज्ञान के अंकुश को सही समय पर सही ढंग से मन पर चलाने वाला जो खेवट यानी महावत है, वह कोई बिरला संत ही होता है, यानी कोई जागृत और सिद्ध गुरु ही होता है जो इस विधा को जानता है। यह दोहा मनोनिग्रह और विवेक का चरमोत्कर्ष है। उपनिषदों में भी शरीर को रथ और मन को घोड़ा या इंद्रियों का बेलगाम पशु कहा गया है। कबीर यहाँ मन की असीम और अनियंत्रित शक्ति को कुंजर अर्थात हाथी के प्रतीक से दिखाते हैं। मन जब तक अपनी वासनाओं के नशे में अंधा रहता है, वह इस कजरी बन यानी संसार के बंधनों में भटकता रहता है। ज्ञान कोई शाब्दिक जानकारी नहीं है, बल्कि वह रतन है, वह भीतरी प्रकाश है जो मन की इस मूर्छा को तोड़ देता है। कबीर समझा रहे हैं कि बिना किसी जागृत मार्गदर्शक के जो खुद इस हाथी को संभालना जानता हो, जीव इस मन की गुलामी से आजाद नहीं हो सकता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने इस मैमंत कुंजर यानी अपने इस मतवाले मन की हरकतों को देखिए। जब भी हमें कोई लालच मिलता है, जब भी हमारे भीतर कोई वासना उठती है, तो हमारा यह मन किस कदर बेकाबू होकर हमें गलत रास्तों पर घसीटने लगता है। क्या हमारे पास इसे रोकने के लिए कोई अंकुश है? आज कोशिश कीजिए अपने भीतर उस ज्ञान रत्न यानी सजगता और विवेक को जगाने की। जब भी मन क्रोध या वासनाओं में अंधा होकर दौड़ने लगे, तो होश का अंकुश लगाइए। किसी जागृत संत के वचनों को, कबीर के इन सूत्रों को अपनी पतवार और मार्गदर्शक बताइए और आपका यह मन शांत हो सके। जब मन काबू में आता है, तो वह अंधकारमय वन भी परमात्मा के आनंद का बगीचा बन जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम।
1: अपन ट्यून के लिए रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपले खंदेश आपली मानसे।
2: बा तथागता कर्मकांडियों ने अंध बनकर काल्पनिकता का उद्घोष किया और मध्य रात्रि में पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल का त्याग कर तू शाश्वत ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। कितना बड़ा षड्यंत्र, कल्पना का बेलगाम सांड, तेरे लोक कल्याण के शाश्वत तत्व ज्ञान को बदनाम करने के लिए छोड़ा गया था। तेरे तत्व ज्ञान को झूठा नहीं ठहराया जा सकता। तेरे लोक कल्याण के आर्य अष्टांगिक मार्ग को कोई पर्याय नहीं मिल सकता। तेरे वैज्ञानिक अध्यात्म तत्व ज्ञान को मर्यादा में बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए बुद्धत्व का तेरा पहला चेहरा ढकने के लिए बदनामी का यह षड्यंत्र रचा गया था। कहते हैं तूने जर जर रोगी देखा, प्रेत को देखा, बुढ़ापे को देखा, इसलिए तुझमें वैराग्य भाव जागृत हुआ। हाँ, यह ऐसा होगा भी, परंतु तेरे परिव्राजक का मार्ग ऐसे अपूर्ण संकीर्ण रास्ते से जाता नहीं। तू विवेकी, तू बुद्धि प्रामाण्यवादी, तू वास्तवता की अनुभूति परख करता, कठोर मीमांसक, साधार प्रमाण खोजी, विज्ञान वेत्ता, सृष्टि के शाश्वत नियम का पारखी, विधि विशेषज्ञ और न्यायाधीश, तू लोक मंगल का गायन करता, सर्वोत्कृष्ट गायक, तेरे धम्म पदों की प्राकृतिक धुन, लय, संगीत आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है सबको। तू निकल पड़ा सत्य की खोज में और स्वामी निष्ठ छन्न तेरे पीछे। तूने त्याग दिया राजेशाही, सुंदर बालों का जुड़ा, माया ममता मोह के साथ त्याग दिया राजवस्त्र भी, संपूर्ण कपिल नगरी चकित हुई तेरे त्यागे हुए वस्त्रों को देखकर। परंतु माता यशोधरा धीर गंभीर थी, तेरी यह यात्रा घने जंगलों झाड़ झंकरों की, भिक्षा से उदर निर्वाह करने की, सत्य की खोज की, कलह समाप्ति की, दुखों से मुक्ति की, प्राकृतिक तत्वों को जानने की, सृजन का निर्माण बिंदु खोजने की, निब्बाण की, परिनिब्बाण की। बा तथागता, तेरी यह यात्रा व्यथा एवं व्याकुलता समाप्ति की, धैर्य से जूझने की, मानवता के आंदोलन की, सर्व भौतिक सुख त्याग की, वैराग्य भोग की, दुख निरोध की, सुख दुखों को समान रूप से देखने की, अनित्य भाव के खोज की, तेरे संवेदना स्पंदन विश्व का अंतिम बिंदु लांगने वाले, संपूर्ण विश्व का तू यात्री, अनंत चांद सितारों ग्रह तारों का तू मित्र, तेरे सांसों में संपूर्ण ब्रह्मांड, विश्व ज्ञान तूने पाया और पचा लिया। तेरी चेतना युक्त मांसपेशी संसार को बता रही है उनका अनित्य बोध, उनकी चित्तानुपश्यना, उनकी वेदनानुपश्यना, उनकी कायानुपश्यना, उनकी धम्मानुपश्यना। खोज खोज खोज, संपूर्ण विश्व की खोज, कण और मन की खोज, सूक्ष्माति सूक्ष्म की खोज, अणु रेणु की खोज, अणु रेणु से बने संपूर्ण विश्व की खोज, परमाणु और उससे भी परे की खोज, पुनः पुनः उनमें का अनित्य भाव, प्रत्येक पेशी का प्रस्फुटित होना, अणु रेणु का विघटन। हे तथागता, तू महान विज्ञानी, छोटी से छोटी बात भी तेरी संवेदनशील दूरबीन से नहीं छूट सकती। तू वैद्य, तू चिकित्सक, तू वैज्ञानिक, तू अध्यापक, तू ज्ञाता, तू श्रोता, तू सब कुछ, सब कुछ तू ही तू। तूने भ्रमण किया विश्व के आदि और अंत का, विज्ञान अध्यात्म और भौतिक जगत का। तेरी जिज्ञासा ऐसी, जब तू प्रकृति से जुड़ा तो प्रकृति का कोना कोना छान मारा यथेच्छ, बिंदास सब प्रकार का मंथन, इसी में से तू एक रूप सर्जन से बद्ध और सृजन से निर्मित तू।
3: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
4: रसिक हो नमस्कार। आनंदाचे डोह ही सद्गुरु कृपेने जीवनात आनंद आलेल्या एका साधकाची भावभक्तीची भावुक गाथा आहे। सद्गुरु कृपेने आपल्या जीवनात आलेला आनंद शब्दात बांधून हा शब्दानंद रसिकांपर्यंत पोचविण्याचा कवी श्री शशिकांत पडोदकरांचा हा प्रयत्न आहे। शब्दानंदासोबतच स्वरानंद आणि आत्मानंद याची अनुभूती देणारी ही गाणी संगीतकार आणि गायक श्री ज्ञानेश्वर कासार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आपणापर्यंत पोचविण्याचे कार्य अतिशय आनंदाने केलेले आहे। रसिक हो, तुम्हालाही या आनंदाचे धनी व्हायचे आहे ना? मग या तर आपण सगळे मिळून हा आनंद लुटूया। हा आनंद कुठून येतो, का येतो आणि कशासाठी येतो हा प्रश्न आपण कधी आपल्या मनाला विचारतो का? तर नाही। कारण आनंद या सगळ्या प्रश्नांच्या पलीकडे तुम्हाला घेऊन जात असतो। सगळ्या प्रश्नांना संपविणे हाच आनंदाचा स्थायी भाव आहे। काल, आज आणि उद्या जिथे संपतो तिथून आनंदाचा प्रवास सुरू होतो। आनंद ही पोचण्याची जागा नाही, तर तो अखंड अनंत व अनादि काळापासून चालत असलेला चालत राहणारा प्रवास आहे। विचार संपतात, क्रियाही संपतात, कर्म, ज्ञान, भक्ती यासारख्या अध्यात्मातल्या सगळ्या पाऊलवाटांचा प्रवास जिथे संपतो तिथून आनंदाचा खरा प्रवास सुरू होतो।

0: आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपला खानदेश, आपली माणसं.
1: ओम शांति. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं. जीवन को जीते हुए बहुत सी चीजें हम देखते जाते हैं, बहुत कुछ बाहर देखा, बहुत कुछ अचीव करते जाते हैं. कई सपने होते हैं जो जीवन से जुड़े हुए होते हैं, परिवार को लेकर होते हैं, बच्चों से जुड़े हुए होते हैं, अपने करियर को लेकर होते हैं, उन्हें अचीव करते जाते हैं. हर अचीवमेंट हमें कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन देती है, एक खुशी का एहसास कराती है. लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसी जीवन में उन सभी आस्पेक्ट से गुजरते गुजरते कहीं ना कहीं वो खुशी कम होती जा रही है. खुशी मिली और फिर अगले ही पल चली भी गई और फिर मैं दोबारा खुशी को ढूंढने लग गई. इस पूरी श्रृंखला में हमारी कोशिश है कि खुशी क्या है उसे समझे. मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, क्या मैं जान पाता हूँ मुझे कौन सी बातें हैं जो खुशी दे सकती हैं. यह खुशी कहीं बाहर से मिलेगी, किसी और के साथ रिलेशनशिप में मिलेगी, किसी अचीवमेंट में मिलेगी, या मेरे अपने ही अंदर है. बहुत सी ऐसी बातें जो खुशी से जुड़ी हैं उन्हें हम जानने का प्रयास करते हैं और इस पूरी श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं. आप हमारे साथ रहिए और हर बार चेक करिए कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है. और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस श्रृंखला में हमें साथ दे रही हैं, हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
2: ओम शांति
1: सिस्टर शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत.
2: थैंक यू.
1: और जहाँ तक बात खुशी की करते हैं, मुझे गम पता है, मुझे सैडनेस पता है, मुझे पता है कि मैं कैसे परेशान हो जाती हूँ, कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे स्ट्रेस में ले आती हैं, कौन सी चीज़ है जो मुझे गुस्सा दिला देती हैं. पर खुशी जो है उसके बारे में अगर मैं सोचने बैठती हूँ तो कहीं ना कहीं मिलती है और फिर चली जाती है, मिलती है फिर चली जाती है. सो क्या ऐसी बातें हैं जो खुशी से जुड़ी हैं?
2: लाइफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस. खुशी कहीं ना कहीं मिलती है फिर चली जाती है, फिर मिलती है फिर चली जाती है. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि सारा दिन में हम जीवन में चल रहे हैं, सिचुएशंस आती हैं, क्योंकि वॉट इज द होल डे, इट इज अ सीरीज ऑफ सिचुएशंस. जैसे कि एक मूवी चल रही है, एक सीन के बाद दूसरा सीन, कोई सीन मेरी फेवर में जाएगा
1: तो मुझे खुशी,
2: कोई सीन मेरी फेवर में नहीं जाएगा. कोई व्यक्ति मेरी फेवर में चलेगा, मतलब जैसे मैं चाहती हूँ वैसे चलेगा, कोई नहीं चलेगा. नाउ बिकॉज माय हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन एंड द पीपल, तो इसलिए जो आपने अभी वोकैबुलरी भी यूज की, कोई मिलती है फिर जाती है, फिर मिलती है फिर जाती है, मतलब एक सीन आया, वेरी नाइस, बच्चे टाइम पर सुबह उठ गए, तैयार भी हो गए, खुशी मिली. दूसरा सीन, टाइम पर तो हो गए थे लेकिन बस ही नहीं आई उनको लेने के लिए, तो मुझे फटाफट भागना पड़ा गाड़ी निकालने की, तो वो सीन में खुशी थी लेकिन नेक्स्ट सीन में खुशी गायब हो गई. फिर नेक्स्ट सीन, टाइम पर फिर भी पहुंच ही गए स्कूल में,
1: वेरी गुड.
2: लेकिन नेक्स्ट सीन पहुंचते याद आया कि जो होमवर्क किया था वो नोटबुक तो घर पे ही रह गई थी. यू नो दिस इज जस्ट सीन्स, लेकिन क्योंकि हर सीन मेरी स्टेट ऑफ माइंड पर एक इफेक्ट डालता है, बिकॉज मैंने अपनी स्टेट ऑफ माइंड का कंट्रोल पूरी तरह से बाहर दिया हुआ है. एंड मैंने सोचा ये नॉर्मल ही तो है कि जैसे जैसे सिचुएशन लोग बदलते जाएंगे, मेरी थॉट्स मेरी फीलिंग्स उस अनुसार बदलेगी. एंड दैट्स व्हाई इट्स कमिंग लाइक दिस कि मिलती जाती, मिलती जाती. एंड हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज हाउ लाइफ इज, कि कभी कभी ठीक, कभी कभी डिस्टर्ब. लेकिन वो तब तक भी ठीक था कि कभी कभी ठीक, कभी कभी डिस्टर्ब. लेकिन फिर क्योंकि माइंड की पावर सिचुएशन को देते गए सिचुएशंस दिन ब दिन थोड़ी थोड़ी चैलेंजिंग होती गई, तो कभी ठीक कभी डिस्टर्ब का जो परसेंटेज था, हाउ मच इट वुड इट बी टुडे,
1: वो ज्यादा बढ़ गया,
2: बढ़ता गया. तो फिर क्या हुआ, ज्यादा ज्यादा डिस्टर्ब, कम कम स्टेबिलिटी. फिर हमारी सर्च शुरू हुई कि वेयर एम आई हेडिंग, यू नो मेरी लाइफ कहाँ है. एंड देन आई हैव रियली स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि सब कुछ तो हो रहा है, एवरीथिंग इज देयर, वेरी गुड हस्बैंड, वेरी गुड वाइफ, दोनों वर्किंग, एक्सीलेंट सैलरी पैकेज घर आ रहा है, 30-35 की एज में मेरा बहुत बड़ा ड्यूप्लेक्स बन चुका है, बाहर दोनों के लिए अलग अलग गाड़ियां खड़ी हैं, बच्चों के लिए अलग, व्हाट मोर टू डू, नथिंग मोर टू डू. लेकिन फिर भी अंदर वो एक थोड़ा सा वैक्यूम है. एंड देन द क्वेश्चन हैज स्टार्टेड कि हैप्पीनेस कहाँ है, वेयर इज दैट. एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू डू थ्रू दिस प्रोग्राम, लुक फॉर इट वेयर इट इज एक्चुअली अवेलेबल.
1: शिवानी, मैंने अभी मेरी किसी से बात हो रही थी जिन्होंने कहा कि मैं खुशी से जुड़ी हुई बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे को इस बात से तो कुछ लेना देना नहीं कि मैं खुश हूं या सैड हूं, मुझे तो पहले सिचुएशंस को हैंडल करना है, क्योंकि सिचुएशंस भी इतनी तेजी से बदल रही हैं, हर पल कुछ नया हो रहा होता है, हर पल. जैसा आपने कहा कि चलो बच्चे तैयार तो हुए लेकिन वो बस ही नहीं है, अगेन यू नो लाइक उस वक्त डिसीजन एकदम से लेना. ये जो प्रॉब्लम है कि सिचुएशंस इतनी फास्ट हैं, या तो मैं अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचूं या मैं उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए अपनी अडैप्टेबिलिटी को करूं.
2: अच्छा, एक सेकंड, हैप्पीनेस को साइड पे रखते हैं. ये सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए फिजिकल भी स्ट्रेंथ चाहिए.
1: बिल्कुल
2: राइट. अगर मैं आज बीमार हूं तो देयर इज नो क्वेश्चन कि मैं उठकर गाड़ी लेकर जाऊं. डॉ तो जब हम अपनी सब सिचुएशंस को हैंडल करते हैं लाइफ में, तो क्या हमारे माइंड में कभी ये क्वेश्चन मार्क उठता कि मैं अपने फिजिकल स्टैमिना को देखूं या सिचुएशन को हैंडल करूं? मुझे नहीं बॉदर करना फिजिकल स्टैमिना के बारे में, मुझे तो सारा कंसंट्रेशन सिचुएशन पर ही करना है. नो, मुझे ये पता है कि फिजिकल स्टैमिना से ही मैं सिचुएशंस को हैंडल करती हूँ. मैं ठीक ही नहीं हूँ तो वर्क जाएगा कौन, वर्क पे होगा क्या, वो तो सेकेंडरी, ऑफिस जाऊंगी कैसे. इसलिए सारे दिन के अंदर मैं ये जरूर ध्यान रखती हूँ कि मेरा शरीर ठीक ठाक चल रहा है,
1: भले आज के वक्त में
2: हाँ, बट फिर भी थोड़ा सी अगेन कि आपको खाना खा तो लेना ना. आप चलो एक दिन मिस कर दोगे, दो दिन, लेकिन कितने दिन मिस करोगे? सपोज आप भागते भागते भी खा रहे हो और जंक भी खा रहे हो, लेकिन कितने दिन,
1: हाँ,

0: तो काम कर
1: तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल हेल्थ को हमने सेग्रीगेट कर दिया.
0: उसके बारे में बाद में सोचेंगे,
1: उसके बारे में बाद में देखेंगे. अगर उसको भी हम उतना ही प्रायोरिटी दे दें कि इमोशनल हेल्थ है तो जीवन की यात्रा में हम ठीक चल पाएंगे. जैसे आपने कहा कि ओहो मैं क्या करूँ, या मैं कोलैप्स हो गई, या एक है फिजिकल कोलैप्स और एक है जो इमोशनल कोलैप्स होते हैं. अब 5 मिनट पहले पता चला कि स्कूल छोड़ने जाना है, ओके. बट अगर मैं उस टाइम यू नो काम रहूं, स्टेबल रहूं, छोड़ने तो फिर भी जाना है, गाड़ी तो आपको फिर भी चलानी है, लेकिन किस स्टेट में चलाएंगे तो यू आर सेफर. सो अगर हम इमोशनल हेल्थ को भी उतना ही एम्फेसिस दें कि ये सब सिचुएशंस और इमोशनल हेल्थ ये सेपरेट नहीं है, इट इज़ अ पैकेज, कि अगर मैं इमोशनली हेल्दी हूँ तो मैं इन सिचुएशंस को क्रॉस कर सकती हूँ. इंस्टेड ऑफ सेइंग लेट मी फर्स्ट फेस द सिचुएशंस then I will take care of my emotional health. Physical health, emotional health, ये मेरा पैकेज है.
0: अभी तक तो हम, लेकिन शिवानी बहन यहाँ पे एक और बात आती है कि अभी तक तो हम इसी बात को बड़ी मुश्किल से समझ रहे थे. यू नो पार्क में जॉगिंग शुरू की थी या वॉक शुरू किया था कि फिजिकल हेल्थ इज नीडेड. यू नो ये भी एक हम स्ट्रेस की तरह ले रहे थे, इन द सेंस कि एक रियलाइजेशन होना शुरू हुआ था मैक्सिमम लोगों को, अब हो रहा है कि क्या मैं खा रही हूँ, किस वक्त पे खा रही हूँ और कितनी वॉक कर रही हूँ, कितनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो जरूरी है.
1: Do you know something? Why we are having to take so much care of physical health today? क्यों इतना ध्यान रखने जा रहे हैं? हमें बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट वन जनरेशन पीछे. सिर्फ अपने पेरेंट्स को देखना है, कोई जॉगिंग नहीं करने गया मेरे पेरेंट्स में से, किसी ने मिनरल वाटर नहीं पिया सारा दिन में, किसी कोई इतना डाइट कॉन्शियस नहीं था, नॉर्मल खाना बनता था, नॉर्मल सब लोग खाते थे. आज इतना ज़्यादा क्यों ध्यान रखना पड़ रहा है फिजिकल हेल्थ पे? क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस इतना ज़्यादा है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम शरीर के साथ चली ही जाती है. तो जो रूट है उसको नहीं ध्यान रखा, रूट की वजह से फिर जो क्रिएट हो रही है सारी प्रॉब्लम्स, अगर रूट पर भी ध्यान रख लें तो यहाँ इतना ज्यादा एम्फेसिस, इतना ज्यादा एफर्ट करना ही नहीं पड़ेगा. अब आज आप जॉगिंग करने तो जा रहे हो या दो लेडी, हाँ फास्ट फास्ट फास्ट, अच्छा फिर उसमें भी अगर 2-3 लोग इकट्ठे जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग तो कर रहे हैं, डिस्कशन की क्वालिटी क्या है?
0: कंटिन्यू, आई टेल यू, यू नो दिस इज अमेजिंग.
1: वॉकिंग कर रहे हैं सेहत के लिए, लेकिन अगर इतनी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होंगी वो चलते चलते, तो नेगेटिव थॉट्स सिर्फ माइंड पर नहीं ना, उसका इफेक्ट बॉडी पर भी है. तो हम फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन जब तक हम ये नहीं रियलाइज करेंगे कि फिजिकल हेल्थ पे भी हमारी इमोशनल हेल्थ का बहुत डीप इम्पैक्ट है, दोनों का ध्यान रखेंगे, देन वी विल गेट दैट राइट, जिसको हम कहेंगे ना हेल्दी बींग, पूरी एक होलसम प्रोडक्ट हेल्दी होगा. आप एक फैक्टर पे ध्यान दो और दूसरे फैक्टर को और ही निग्लेक्ट करते जाओ, निग्लेक्ट करते जाओ,
0: उसके ऊपर और स्ट्रेस क्रिएट करे जा रहे हो एक्चुअली,
1: तो फिर ये साइड पे क्या रिजल्ट निकलेगा? मेहनत ज्यादा और फिर भी रिजल्ट कम. आज डॉक्टर्स के पास इतने यंग प्रोफेशनल, स्पेशली यू नो जो प्रोफेशनल हमारे यूथ हैं 30s के एज ग्रुप के अंदर है, कहेंगे मेरी लाइफस्टाइल ठीक है, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, वेजिटेरियन फूड भी कई लोग ले रहे हैं, जॉगिंग मैं रोज जाता हूँ, फिर भी 30 के एज में आकर ये इलनेस क्यों? क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर पर ध्यान नहीं रखा, बाकी सब चीज़ों पर ध्यान रखा, ये नहीं रखा कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है सारा दिन, उसको तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया या फिर उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट ही कर दिया. इसका कुछ नहीं हो सकता, टेंशन ये सब तो चलने ही वाला है, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो बीमारियां हो रही हैं, उनका मैं इलाज करवा सकता हूँ.
0: सो व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ?
1: हैप्पीनेस
0: इज इमोशनल हेल्थ,
1: इज मेंटली हेल्दी. और जिस क्षण आप खुशी का अनुभव नहीं कर रहे हैं उस समय
0: आप अनहेल्दी, मेंटली अनहेल्दी हैं.
1: तो ना अब आप अपना दिन का इंडेक्स चेक कर लेना कि कैसा बीत रहा है सारा दिन. क्योंकि क्यों, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? जब आप नॉर्मल फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील, सपोज आई एम वॉकिंग, लेकिन वॉक करते करते मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है पैर में, एंकल में या नी में, लेकिन मैं उस दर्द के साथ भी तो चल ही लेती हूँ ना, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं. कोई कहे डॉक्टर को दिखाओ, हाँ दिखा लेंगे, टाइम नहीं है. धीरे धीरे मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ उस दर्द के साथ ही चलना. यू नो आई से आई डोंट हैव टाइम टू ट्रीट माई सेल्फ, या कौन जाए फिर डॉक्टर के पास. ओके, सो आई स्टार्ट वॉकिंग विद दैट पेन. So I accept that physical pain
0: as a part of my life. Yes.
1: And I say, it's okay, I will accept that. Lekin, is that health? Is that a healthy foot, a healthy knee?

0: नहीं, मैंने उस पेन को स्वीकार कर दिया, उसको ही नॉर्मल कह दिया, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है।
1: उस वक्त हम अपने आप को क्या कहते हैं कि कहीं नेचुरली ठीक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा
0: अपने
1: ऐसा।
0: आप ठीक हो जाएगा। सेम थिंग विद द स्टेट ऑफ माइंड। अच्छा, दर्द है, टेंशन है, ये तो पार्ट है,
1: छोड़ो
0: चलते
1: ना
0: जाओ,
1: इसको। हाँ
0: घसीटते जाओ इसको, स्वीकार कर लिया। सभी को तो है, सिर्फ मुझे थोड़ी है। तो जो चीज सभी को है, यू नो, इफ वेन वी डू वर्कशॉप्स एंड ऑल, 100 लोग बैठे हो या 5,000 लोग बैठे हो, जस्ट आस्क देम वन सिंपल क्वेश्चन, आपको टेंशन होती है? यू वोंट बिलीव, एक भी वर्कशॉप में आई हैव नॉट सीन कि कोई एक खड़े होकर कहे कि हाँ मुझे होती है। यूनानिमसली एवरीवन विल से सभी को
1: सबको
0: होती
1: होती
0: है।
1: है।
0: एंड
1: हाँ
0: इट्स सो ब्यूटीफुल टू सी द वे एवरीवन इज सेइंग सभी को होती
1: मतलब,
0: है।
1: और जवाब ऐसे आते हैं कि कौन है जिसको नहीं होती
0: एंड
1: है।
0: अगर कोई कहे भी दे ना इंडिविजुअली, तो नो वन विल एक्सेप्ट। तो जैसे ही हमने कहा सभी को होती है, इट मेक्स मी फील, अच्छा ठीक है,
1: I'm part
0: तुम
1: of
0: अजीब नहीं हो, ये बीमारी तो आजकल सभी को लगी है। और सभी को लगी होने से मैं उसको और स्वीकार कर लेती हूँ कि ये तो, और फिर हमने उसको ही नेचुरल उस, तो अगर हम अपने दर्द को शुरू होते ही चेक कर लें, तो फिर हम क्या होंगे, इमोशनली अपना ध्यान रख सकेंगे। लेकिन दर्द है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, टेंशन हो रही है, चिड़चिड़ापन थोड़ा सा बढ़ता गया गुस्से में, हमने कहा कोई बात नहीं, चलते जाओ चलते जाओ, टाइम नहीं है रुक कर अपना ध्यान रखने के लिए। तो कैन वी कॉल दैट हेल्दी? कैन यू कॉल योर सेल्फ हेल्दी देन?
1: नो यस यू नो बिकॉज इट्स वेरी वेरी
0: नेचुरल नहीं है,
1: इरिटेटिंग।
0: नेचुरल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, अंदर एक तकलीफ थोड़ी सी वो क्रिएट कर रहा है। तो इमोशनल हेल्थ मेरी किस लेवल पर है आज, ये पूछने के लिए मुझे किसी और के पास नहीं जाना है।
1: एक्चुअली और उसे हम कुछ देर के लिए भूल, जैसे दर्द को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं जब हम किसी और चीज़ में होते हैं, पर दर्द एक्चुअली फिर से स्पर्ट आउट हो जाती है।
0: जाता है, तो हम कोई ना कोई सिचुएशंस या कोई ना कोई और तरीके
1: स्टिमुलेंट।
0: ढूंढते
1: हाँ
0: हैं जिससे हम अपने माइंड को उससे डेविएट कर लें। सिमिलरली इमोशनल हेल्थ में भी कि हाँ है, चलो कुछ ऐसा कर लें जिससे मैं थोड़ी देर इस बात को भूल जाऊं, शॉपिंग चले जाऊं, किसी से थोड़ी देर फोन पर बात कर लूं, तो मैं अपने खालीपन को थोड़ी देर भूल जाऊं। लेकिन गया तो नहीं ना, सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए आपने साइड ट्रैक कर दिया, है अभी भी वहीं। सो कहीं ना कहीं बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ दैट वी आर ऑल लीडिंग, बट समवेयर वी आर नॉट इंजॉयिंग द ब्यूटी ऑफ इट, जस्ट बिकॉज हम सिर्फ एक डायमेंशन को निग्लेक्ट कर रहे हैं। बाकी तो सबकी तरफ हमारा बहुत अच्छा ध्यान है, लेकिन जो फंडामेंटल डायमेंशन है जहाँ से सारा कुछ शुरू होता है, यू नो, इट्स लाइक अ ट्री, सीड है, सीड की क्वालिटी को हम नहीं ध्यान रख रहे। हाँ, बाकी ट्रंक बहुत अच्छा है, ब्रांचेस बहुत अच्छे हैं, लीव्स, फ्रूट सब हम सहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन सीड की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हर टाइम कुछ ना कुछ और
1: कमी रह, तभी
0: प्रॉब्लम
1: तो
0: आते
1: कमी रह
0: जाए।
1: रही है, तभी तो हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छा है, हम उसको अच्छा बनाने का
0: हाँ,
1: प्रयास
0: तो
1: कर रहे
0: क्योंकि
1: हैं।
0: इधर नहीं प्रयास कर रहे ना, हम सीड पर पानी नहीं डाल रहे, तो हर एक पत्ते पर पानी डाल रहे हैं, हर एक फल पर पानी डाल रहे हैं, यहाँ डालते यहाँ तक पहुँचते ये सूख जाता, कहेगा बच्चों का ध्यान रखो या ऑफिस का करो, इनको खुश करो या इनको खुश करो, एफर्ट बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक कमज़ोर मन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। कमज़ोर मन अपने को ठीक नहीं कर रहा, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है। सपोज आज हम 10 घंटा काम करते, लेकिन कल हम बीमार हैं फिजिकली और हम 10 घंटा काम करें, दोनों दिन में फर्क होगा या नहीं होगा?
1: बिल्कुल
0: फर्क होगा, एक तो
1: हमारी
0: एफिशिएंसी
1: प्रोडक्टिविटी।
0: डाउन हो
1: हाँ
0: जाएगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कर भी लेंगे लेकिन उस पूरे दिन को हम उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं करेंगे जैसे बाकी दिन को करते। इसलिए हम क्या करते हैं, आज तबीयत ठीक नहीं है ना, थोड़ा सा गैप लो, इसको ठीक करो, ताकि फिर नेक्स्ट डे इट विल बी वेरी वेरी गुड। सिमिलरली अगर इसकी भी हेल्थ पर हम थोड़ा सा ध्यान दें, तो फिर हमें ड्रैग नहीं करना पड़ेगा अपने जीवन को, कर रहे हैं लेकिन बीमारी की हालत में कर रहे हैं, एंड तब सब कुछ करते हुए भी एक तो मेहनत लग रही है, एफर्ट लग रहा है, एंड समवेयर दैट फन और दैट एंजॉयमेंट इन लाइफ इज नॉट देयर, फिर एंजॉयमेंट के लिए और कुछ करना पड़ता है,
1: ओ
0: बिकॉज आई एम
1: यस
0: नॉट एंजॉयिंग लाइफ।
1: ओ यस वेरी ट्रू। और वो एन्जॉयमेंट के लिए हम क्या क्या करते हैं उस पर बात हम जरूर करेंगे, लेकिन आज जो आप बात समझ में आ रही है शिवानी बहन, वो ये कि और इनफैक्ट जहाँ आपने फिजिकल अनहेल्दीनेस की बात की, तो उसको ब्रेक हम सब देते हैं, यू नो आई नो वर्कहोलिक्स जो हैं वो कहते हैं एक किसी दिन गायब भी हो जाएंगे वो, दैट वी वांटेड टू टेक अ ब्रेक, यू नो, तो उनको फोन पर संपर्क करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज दे सेड वी कुडंट फिजिकली गेट अप, यू नो.
0: तो आप देखो ना कि वो किस लेवल तक पहुंच जाते हैं एकदम, और फिर उनको टोटली डिस्कनेक्ट करना पड़ता है. तो दोनों चीजें एक्चुअली बैलेंस्ड नहीं है, जो बहुत ज्यादा कर रहे थे वो भी बैलेंस्ड नहीं था, फिर एकदम से डिस्कनेक्ट कर देते हैं वो भी बैलेंस नहीं है, मतलब सडनली सबसे कट ऑफ हो जाते हैं. तो फिर वो एक्सट्रीम पर अपने जीवन को जैसे चला रहे हैं कि या तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर घुस गए हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, और फिर वो कोलैप्स हो जाते हैं, तो फिर एकदम से उससे विड्रॉ करना पड़ता है.
1: आई थिंक यू द वे यू हैव पुट इट एक्चुअली इज वेरी राइट, बिकॉज अभी तक हम ये मानते थे कि ये राइट तरीका है, क्योंकि आप काम करो तो खूब दबा के काम करो और जब रेस्ट लो तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट होके करो.
0: मशीन से भी जब काम करवाते हो, चलो ह्यूमन बींग तो छोड़ो, एक मशीन से भी अगर काम करवाते हो तो मशीन ठीक चल रही होगी तब तो वो आपका रिजल्ट देगी. वो कर कर कर कर करके आप उससे फिर भी आप बोलो नहीं, आई विल नॉट स्टॉप टू ऑयल इट, आई विल नॉट स्टॉप टू मेंटेन इट, कितने दिन फिर वो एक दिन एकदम बंद हो जाएगी और फिर उस दिन कहेंगे आज तो ये मशीन काम ही नहीं कर रही. जब वो मशीन ने थोड़ा सा ही सिग्नल देना शुरू किया था तभी अगर उसको ऑयल कर देते या ठीक कर देते, यू वुडंट कम टू दैट वन डे जिस दिन वो काम करना बंद कर देगी.
1: जब मैं काम कर रहा हूँ, चाहे मैं प्रोफेशन में हूँ, चाहे मैं अपने बच्चों की केयर कर रही हूँ, चाहे मैं मतलब कुछ भी जिस भी पर्पस में मैं हूँ, उस वक्त मैं अपनी फिजिकल या मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर रह सकती हूँ.
0: ध्यान रखना, यू नो, आजकल जैसे मेडिटेशन और ये सब बहुत अपकमिंग हो गया, तो बहुत लोग कहते हैं ध्यान करना है, हमें ध्यान करना है. ऐसे ध्यान करना बहुत डिफिकल्ट है, उसको छोड़ो, ध्यान रखना है सिर्फ, यू नो. ध्यान करना तो ऐसे फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज लगती है कि एकदम थॉटलेस हो जाएंगे,
1: मुझे टाइम सोचना पड़ेगा. ये
0: सारा दिन में सिर्फ अपना ध्यान रखना है. सबका ध्यान रख लेते हो, ऑफिस का, घर का, परिवार का, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी का, अपने मोबाइल का, मतलब इवन एक अच्छी कार आपने ली है, आप याद रखते हो कि हर महीने इस डेट पर इसको सर्विसिंग के लिए भेजना है. कितने महीने नहीं भेजेंगे और वो कितने महीने चलेगी बिना सर्विसिंग के, वी नो. सो इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द कार एवरी मंथ आई विल सेंड इट फॉर सर्विसिंग. एवरीथिंग आई टेक केयर ऑफ, देन व्हाई डू आई जस्ट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ माय माइंड? दैट्स ऑल, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. इसलिए ध्यान रखना हम सबको आता है. हमें कहीं से सीखने नहीं जाना है, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, हमें कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिर्फ हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है ये. किसी से भी आप पूछो किस किस का ध्यान रखते हो सारा दिन, फैमिली, ऑफिस, घर, यू नो, बच्चे, परिवार, अपना, कहेंगे हाँ हम शरीर का ध्यान रखते हैं ना, इसको साफ रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं. तो अपना भी जब कहेंगे तो दे विल ओनली थिंक ऑफ कि इस बॉडी का ध्यान रखना, मन का ध्यान रखना.
1: और हम कितनी बार कहते हैं हमारा ध्यान तो वो रखेगा ना ऊपर.
0: हाँ, पर जब हम ऊपर वाले के ऊपर भी डालते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम उसकी भी हेल्प इसी में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे सिचुएशंस में हमारा ध्यान रखेगा. मेरे मन का ध्यान, मेरी क्वालिटी ऑफ थॉट्स और फीलिंग्स का ध्यान, उसमें भी उसको तो नहीं याद करते बिल्कुल भी. आज आप सत्संग में जाओ, प्रवचन में जाओ, कुछ भी करो, वेरेवर, मंदिर जाओ, जहाँ भी जाओ, तो किस लिए जाते हैं? जाते हैं ताकि थोड़ी देर जाकर अच्छा लगेगा, पुण्य का खाता मेरा जमा होगा, मेरा वीक का अच्छा काम वाला कोटा हो जाएगा. हाउ मेनी ऑफ अस आर गोइंग विद द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग ऑन माई सेल्फ, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, अपने थॉट्स, अपने संस्कारों के ऊपर काम करने के लिए हम सत्संग में जाते हैं क्या? हम सिर्फ वहाँ जाते हैं, एक घंटा दो घंटा बैठते हैं, बहुत अच्छी बातें सुनते हैं, सुनते सुनते यस वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, दैट्स ऑल. एंड फिर ये फ्राइडे से नेक्स्ट फ्राइडे तक
1: भूल जाते
0: हैं, सेम लाइफ, सेम वैसे ही डिस्टर्बेंस, केओस, क्राइसिस, एवरीथिंग. फिर नेक्स्ट फ्राइडे गए, दो घंटा बैठे, किया. तो एम ऑब्जेक्टिव वहां भी ये नहीं है कि अपने मन का ध्यान रखना. तो कहीं ना कहीं सब चीजों का ध्यान रखते रखते इसको एक प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना है, क्योंकि सबका ध्यान रखने वाला ये मन है. ये शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी आज बीमार थोड़ा होगा तो मैं चला लूंगी अगर मन खुश है, लेकिन सब कुछ ठीक होते भी अगर मैं इरिटेट होती गई, यू नो, डिस्टर्ब होती गई, आई डोंट नो हाउ एफिशिएंट आई एम एट एवरीथिंग.
1: मेरे मन को खुश करने वाले तो दूसरे हैं, मेरा ध्यान रखने वाले तो दूसरे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, मेरे कलीग्स हैं, वो ध्यान रखेंगे मेरा, मेरे मन का तो कोई ध्यान रखेगा?
0: इसीलिए तो हाल फिर ऐसा हो गया ना आज, क्योंकि दूसरों पे डिपेंड किया। मेरे परिवार का ध्यान कौन रखता?
1: मैं
0: रखती हूँ। मेरे घर का ध्यान कौन रखता?
1: मैं
0: रखती हूँ। तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? मैं रखूंगी ना।
1: अपना ध्यान मैं कैसे रखूंगी? ये एक बात है जो हमें ये सीखनी पड़ेगी।
0: अपना में भी प्लीज लेट्स रिमेम्बर मन का, क्योंकि अपना कहते भी सिर्फ नहीं तो फोकस आता कि हाँ इस शरीर का ध्यान तो हम रखते ना, एक्चुअली सारा दिन तो इस शरीर के लिए ही चल रहा है, यू नो, शरीर का कंफर्ट, शरीर का भोजन, शरीर के लिए गाड़ी, शरीर के लिए मकान, सब कुछ तो शरीर के लिए हो रहा है, मन का ध्यान। और एक्चुअली जब अपने मन का ध्यान नहीं रख पाते तो किसी और के मन का ध्यान भी नहीं रख पाएंगे।
1: सच में देखें तो हाँ।
0: परिवार को भी अगर कहें, क्योंकि हम कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार का ध्यान रखना, परिवार के ध्यान में भी हम सिर्फ शरीर का ध्यान रख रहे हैं। बेस्ट स्कूल, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट ड्रेसिंग,
1: बेस्ट म्यूजिक
0: टॉयज, बेस्ट ऑल दिस, इमोशनल हेल्थ, बच्चों की इमोशनल हेल्थ का कौन ध्यान रख रहा है? कोई नहीं,
1: तो हमें पता ही नहीं ना। yes.
0: क्योंकि अपने ऊपर जो चीज नहीं हम प्रायोरिटाइज करेंगे, और मेन चीज ये है कि जहां बाकी ध्यान रखने की बात आती तो हम बिना अपना ध्यान रखे भी मैं आपका ध्यान रख सकती हूँ। सपोज मेरे पास आज दो ही फुलके पड़े हैं, दो ही चपाती पड़ी है, मैं बिना खाए आपको खिला सकती हूँ, तो इट्स ओके। मैं अपने लिए नए कपड़े नहीं लूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ले सकती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बिना खुश रहे औरों को खुशी नहीं दे सकते। दिस इज वन थिंग विच आई कैन नॉट गिव एनी वन एल्स टिल आई हैव इट।
1: गुड,
0: सो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट
1: थिंग, अंडरलाइन,
0: कि पहले मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिकली औरों का ध्यान हो जाएगा। इफ आई एम इमोशनली स्ट्रांग, ऑटोमेटिकली मेरे बच्चे इमोशनली स्ट्रांग होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ही सारा दिन डिस्टर्ब हूँ, मैं ही सारा दिन चिल्ला रही हूँ, मैं ही सारा दिन उनको गुस्सा कर रही हूँ, मेरी सेल्फ एस्टीम लो है तो उनकी सेल्फ एस्टीम
1: लो होती जाएगी। यस, आई थिंक यू वेरी राइट, और इस पर हमें बात, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे शिवानी आज की जो बातचीत हमने की है, एक अंडरलाइंड थिंग कि मैं सबका ध्यान बाकी चीजों में रख सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने अपना ध्यान, अपने मन का ध्यान नहीं रखा है तो किसी का भी ध्यान नहीं रख पाऊंगी। आई थिंक वेयर वी हैव स्टार्टेड, आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल, बिकॉज समवेयर दिस नीडेड टू बी, यू नो, अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। ओम शांति। अगर हम देखें तो सचमुच में हम ध्यान सबका रखते हुए अपना नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, कैसे रखना है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत आसान है, हमें ध्यान रखना बेसिकली आता है, लेकिन कैसे रखना है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज जो हमें समझनी है, याद रखनी है, वो ये कि अगर मैंने अपने मन का ध्यान नहीं रखा, मैं किसी का ध्यान नहीं रख सकती, किसी के भी इमोशंस का, किसी के भी जो पूरे एस्पेक्ट्स हैं उनका ध्यान नहीं रख पाऊंगी। तो यहीं से आज शुरुआत करते हैं। हो सकता है आपके मन में कोई बात उठी हो, आपका हम स्वागत करते हैं। ये एक ऐसा मंच है जिस पर जीवन से जुड़ा कोई एस्पेक्ट है, कहीं कोई आपको लग रहा है कि मुझे हैप्पीनेस के बारे में ये बात करनी है, ध्यान रखने की बात करनी है, तो किस बात पर ध्यान रखना चाहते हैं, इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 01242666 999 3444 6 9 8 7 3 6 6 5। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज शुरू कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स को जानने की। जी हाँ, खुशी का जो आंकना है वो कितना दिन भर में ऊपर नीचे होता है, वो कैसे रहेगा एक स्टेबल लेवल पर, इस बात का प्रयास हम करेंगे इस पूरी श्रृंखला में। आज शुरुआत है, आपसे अब विदा लेते हैं, लेकिन आने वाली कड़ियों में बहुत सी बातें जानेंगे। ओम शांति।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपलं खानदेश, आपली माणसं.
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही घना, विशाल और अंधकार से भरा हुआ जंगल है जहां रास्ता खोजना लगभग असंभव है. और उस भयानक जंगल में एक विशालकाय हाथी अपने ही लहर में मदमस्त होकर दौड़ रहा हो. वह इतना शक्तिशाली और पागल हो चुका हो कि रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ फेंकें, पूरे जंगल को तहस नहस कर दें. अब आप ही बताइए, उस पागल और बलशाली हाथी को काबू में करने का क्या किसी आम इंसान के बस की बात है? बिल्कुल नहीं. उसे सिर्फ वही नियंत्रित कर सकता है जिसके पास एक सही औजार हो और उस औजार को चलाने का हुनर भी हो. कबीर साहब आज हमें समझा रहे हैं कि हमारे भीतर भी 24 घंटे एक ऐसा ही भयानक जंगल और एक ऐसा ही मदमस्त हाथी खेल रहा है जो हमारी पूरी आत्मिक शांति को उजाड़ देता है. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह दार्शनिक सूत्र. काया कजरी बन अहे मन कुंजर मयमंत, काया कजरी मन अहे मन कुंजर मयमंत, अंकुश ज्ञान रतन है खेवट बिरला संत. काया कजरी बन अहे

0: श्रोताओं, कबीर साहब हमारे अस्तित्व की आंतरिक संरचना को समझाते हुए कहते हैं, काया कजरी बन अहे। यह जो हमारा भौतिक शरीर और संसार है, यह और कुछ नहीं बल्कि कजरी बन यानी काजल का एक ऐसा घना और अंधकारमय वन है, जहां अज्ञान और वासनाओं की काली मां फैली हुई है। मन कुंजर मैमंत और इस घने जंगल के भीतर जो हमारा मन है, वह मैमंत कुंजर यानी एक मदमस्त मतवाले और बेकाबू हाथी की तरह है, जो इच्छाओं के वश में होकर इधर उधर भटक रहा है और हमारी चेतना को अशांत कर रहा है। तो इस मदमस्त हाथी को काबू में कैसे किया जाए? अगली पंक्ति में कबीर इसका अचूक उपाय बताते हैं। अंकुश ज्ञान रतन है, जैसे हाथी को नियंत्रित करने के लिए महावत के हाथ में एक तीखा अंकुश होता है, वैसे ही इस मतवाले मन को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी रत्न एकमात्र अंकुश है। खेवट बिरला संत, लेकिन उस ज्ञान के अंकुश को सही समय पर सही ढंग से मन पर चलाने वाला जो खेवट यानी महावत है, वह कोई बिरला संत ही होता है, यानी कोई जागृत और सिद्ध गुरु ही होता है जो इस विधा को जानता है। यह दोहा मनोनिग्रह और विवेक का चरमोत्कर्ष है। उपनिषदों में भी शरीर को रथ और मन को घोड़ा या इंद्रियों का बेलगाम पशु कहा गया है। कबीर यहाँ मन की असीम और अनियंत्रित शक्ति को कुंजर अर्थात हाथी के प्रतीक से दिखाते हैं। मन जब तक अपनी वासनाओं के नशे में अंधा रहता है, वह इस कजरी बन यानी संसार के बंधनों में भटकता रहता है। ज्ञान कोई शाब्दिक जानकारी नहीं है, बल्कि वह रतन है, वह भीतरी प्रकाश है जो मन की इस मूर्छा को तोड़ देता है। कबीर समझा रहे हैं कि बिना किसी जागृत मार्गदर्शक के जो खुद इस हाथी को संभालना जानता हो, जीव इस मन की गुलामी से आजाद नहीं हो सकता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने इस मैमंत कुंजर यानी अपने इस मतवाले मन की हरकतों को देखिए। जब भी हमें कोई लालच मिलता है, जब भी हमारे भीतर कोई वासना उठती है, तो हमारा यह मन किस कदर बेकाबू होकर हमें गलत रास्तों पर घसीटने लगता है। क्या हमारे पास इसे रोकने के लिए कोई अंकुश है? आज कोशिश कीजिए अपने भीतर उस ज्ञान रत्न यानी सजगता और विवेक को जगाने की। जब भी मन क्रोध या वासनाओं में अंधा होकर दौड़ने लगे, तो होश का अंकुश लगाइए। किसी जागृत संत के वचनों को, कबीर के इन सूत्रों को अपनी पतवार और मार्गदर्शक बताइए और आपका यह मन शांत हो सके। जब मन काबू में आता है, तो वह अंधकारमय वन भी परमात्मा के आनंद का बगीचा बन जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजन आणि सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका। रेडिओ मन भावन 90.8 FM अलवेज हर्ट टच।
2: तथागता कर्मकांडियों ने अंध बनकर काल्पनिकता का उद्घोष किया और मध्य रात्रि में पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल का त्याग कर तू शाश्वत ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। कितना बड़ा षड्यंत्र, कल्पना का बेलगाम सांड, तेरे लोक कल्याण के शाश्वत तत्व ज्ञान को बदनाम करने के लिए छोड़ा गया था। तेरे तत्वज्ञान को झूठा नहीं ठहराया जा सकता। तेरे लोक कल्याण के आर्य अष्टांगिक मार्ग को कोई पर्याय नहीं मिल सकता। तेरे वैज्ञानिक अध्यात्म तत्वज्ञान को मर्यादा में बंद नहीं किया जा सकता। इसलिए बुद्धत्व का तेरा पहला चेहरा ढकने के लिए बदनामी का यह षड्यंत्र रचा गया था। कहते हैं तूने जर जर रोगी देखा, प्रेत को देखा, बुढ़ापे को देखा, इसलिए तुझ में वैराग्य भाव जागृत हुआ। हाँ, यह ऐसा होगा भी, परंतु तेरे परिव्राजक का मार्ग ऐसे अपूर्ण संकीर्ण रास्ते से जाता नहीं। तू विवेकी, तू बुद्धि प्रामाण्यवादी, तू वास्तवता की अनुभूति परख करता, कठोर मीमांसक, साधार प्रमाण खोजी, विज्ञान वेत्ता, सृष्टि के शाश्वत नियम का पारखी, विधि विशेषज्ञ और न्यायाधीश, तू लोक मंगल का गायन करता, सर्वोत्कृष्ट गायक, तेरे धम्म पदों की प्राकृतिक धुन, लय, संगीत आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है सबको। तू निकल पड़ा सत्य की खोज में और स्वामी निष्ठ छन्न तेरे पीछे। तूने त्याग दिया राजेशाही, सुंदर बालों का जूड़ा, माया, ममता, मोह के साथ त्याग दिया राजवस्त्र भी। संपूर्ण कपिल नगरी चकित हुई तेरे त्यागे हुए वस्त्रों को देखकर, परंतु माता यशोधरा धीर गंभीर थी। तेरी यह यात्रा घने जंगलों झाड़ झंकरों की, भिक्षा से उदर निर्वाह करने की, सत्य की खोज की, कलह समाप्ति की, दुखों से मुक्ति की, प्राकृतिक तत्वों को जानने की, सृजन का निर्माण बिंदु खोजने की, निब्बाण की, परिनिब्बाण की। बा तथागता, तेरी यह यात्रा व्यथा एवं व्याकुलता समाप्ति की, धैर्य से जूझने की, मानवता के आंदोलन की, सर्व भौतिक सुख त्याग की, वैराग्य भोग की, दुख निरोध की, सुख दुखों को समान रूप से देखने की, अनित्य भाव के खोज की, तेरे संवेदना स्पंदन विश्व का अंतिम बिंदु लांगने वाले, संपूर्ण विश्व का तू यात्री, अनंत चांद सितारों ग्रह तारों का तू मित्र, तेरे सांसों में संपूर्ण ब्रह्मांड, विश्व ज्ञान तूने पाया और पचा लिया। तेरी चेतना युक्त मांसपेशी संसार को बता रही है उनका अनित्य बोध, उनकी चित्तानुपश्यना, उनकी वेदनानुपश्यना, उनकी कायानुपश्यना, उनकी धम्मानुपश्यना। खोज खोज खोज, संपूर्ण विश्व की खोज, कण और मन की खोज, सूक्ष्माति सूक्ष्म की खोज, अणु रेणु की खोज, अणु रेणु से बने संपूर्ण विश्व की खोज, परमाणु और उससे भी परे की खोज, पुनः पुनः उनमें का अनित्य भाव, प्रत्येक पेशी का प्रस्फुटित होना, अणु रेणु का विघटन। हे तथागता, तू महान विज्ञानी, छोटी से छोटी बात भी तेरी संवेदनशील दूरबीन से नहीं छूट सकती। तू वैद्य, तू चिकित्सक, तू वैज्ञानिक, तू अध्यापक, तू ज्ञाता, तू श्रोता, तू सब कुछ तू ही तू। तूने भ्रमण किया विश्व के आदि और अंत का, विज्ञान अध्यात्म और भौतिक जगत का। तेरी जिज्ञासा ऐसी, जब तू प्रकृति से जुड़ा तो प्रकृति का कोना कोना छान मारा यथेच्छ, बिंदास सब प्रकार का मंथन, इसी में से तू एक रूप सर्जन से बद्ध और सृजन से निर्मित तू।

0: आपण ऐकत आहात रेडिओ मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: प्रेम मुदित मन से।

0: नमस्कार, मी शर्मिला राजाराम शिंदे आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: ओम शांति. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं. जीवन को जीते हुए बहुत सी चीजें हम देखते जाते हैं, बहुत कुछ बाहर देखा, बहुत कुछ अचीव करते जाते हैं. कई सपने होते हैं जो जीवन से जुड़े हुए होते हैं, परिवार को लेकर होते हैं, बच्चों से जुड़े हुए होते हैं, अपने करियर को लेकर होते हैं, उन्हें अचीव करते जाते हैं. हर अचीवमेंट हमें कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन देती है, एक खुशी का एहसास कराती है. लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसी जीवन में उन सभी आस्पेक्ट से गुजरते गुजरते कहीं ना कहीं वो खुशी कम होती जा रही है. खुशी मिली और फिर अगले ही पल चली भी गई और फिर मैं दोबारा खुशी को ढूंढने लग गई. इस पूरी श्रृंखला में हमारी कोशिश है कि खुशी क्या है उसे समझे. मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, क्या मैं जान पाता हूँ मुझे कौन सी बातें हैं जो खुशी दे सकती हैं. यह खुशी कहीं बाहर से मिलेगी, किसी और के साथ रिलेशनशिप में मिलेगी, किसी अचीवमेंट में मिलेगी, या मेरे अपने ही अंदर है. बहुत सी ऐसी बातें जो खुशी से जुड़ी हैं उन्हें हम जानने का प्रयास करते हैं और इस पूरी श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं. आप हमारे साथ रहिए और हर बार चेक करिए कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है. और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस श्रृंखला में हमें साथ दे रही हैं, हमें बताने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी. ओम शांति.
2: ओम शांति
1: सिस्टर शिवानी, आपका बहुत बहुत स्वागत.
2: थैंक यू.
1: और जहाँ तक बात खुशी की करते हैं, मुझे गम पता है, मुझे सैडनेस पता है, मुझे पता है कि मैं कैसे परेशान हो जाती हूँ, कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे स्ट्रेस में ले आती हैं, कौन सी चीज़ है जो मुझे गुस्सा दिला देती हैं. पर खुशी जो है उसके बारे में अगर मैं सोचने बैठती हूँ तो कहीं ना कहीं मिलती है और फिर चली जाती है, मिलती है फिर चली जाती है. सो क्या ऐसी बातें हैं जो खुशी से जुड़ी हैं?
2: That was a very beautiful sentence. Huh? खुशी कहीं ना कहीं मिलती है फिर चली जाती है, फिर मिलती है फिर चली जाती है. Now what we are trying to say is कि सारा दिन में हम जीवन में चल रहे हैं, situations आती हैं, क्योंकि what is the whole day? It is a series of situations. जैसे कि एक मूवी चल रही है, एक सीन के बाद दूसरा सीन. कोई सीन मेरे फेवर में जाएगा
1: तो मुझे खुशी मिली,
2: कोई सीन मेरी फेवर में नहीं जाएगा. कोई व्यक्ति मेरी फेवर में चलेगा, मतलब जैसे मैं चाहती हूँ वैसे चलेगा, कोई नहीं चलेगा. नाउ बिकॉज माई हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन एंड द पीपल, तो इसलिए जो आपने अभी वोकैबुलरी भी यूज की, कोई मिलती है फिर जाती है, फिर मिलती है फिर जाती है, मतलब एक सीन आया, वेरी नाइस, बच्चे टाइम पर सुबह उठ गए, तैयार भी हो गए, खुशी मिली. दूसरा सीन, टाइम पर तो हो गए थे लेकिन बस ही नहीं आई उनको लेने के लिए, तो मुझे फटाफट भागना पड़ा गाड़ी निकालने की, तो वो सीन में खुशी थी लेकिन नेक्स्ट सीन में खुशी गायब हो गई. फिर नेक्स्ट सीन, टाइम पर फिर भी पहुंच ही गए स्कूल में,
1: वेरी गुड.
2: लेकिन नेक्स्ट सीन, पहुंचते याद आया कि जो होमवर्क किया था वो नोटबुक तो घर पे ही रह गई थी. यू नो दिस इज जस्ट सीन्स, लेकिन क्योंकि हर सीन मेरी स्टेट ऑफ माइंड पर एक इफेक्ट डालता है, बिकॉज मैंने अपनी स्टेट ऑफ माइंड का कंट्रोल पूरी तरह से बाहर दिया हुआ है. एंड मैंने सोचा ये नॉर्मल ही तो है कि जैसे जैसे सिचुएशन लोग बदलते जाएंगे, मेरी थॉट्स मेरी फीलिंग्स उस अनुसार बदलेगी. एंड दैट्स व्हाई इट्स कमिंग लाइक दिस, कि मिलती जाती मिलती जाती. एंड हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज हाउ लाइफ इज, कि कभी कभी ठीक, कभी कभी डिस्टर्ब, लेकिन

0: ठीक था कि कभी कभी ठीक कभी कभी डिस्टर्ब, लेकिन फिर क्योंकि माइंड की पावर सिचुएशन को देते गए सिचुएशंस दिन ब दिन थोड़ी थोड़ी चैलेंजिंग होती गई, तो कभी ठीक कभी डिस्टर्ब का जो परसेंटेज था, हाउ मच इट वुड इट बी टुडे,
1: वो ज्यादा बढ़ गया,
0: बढ़ता गया. तो फिर क्या हुआ, ज्यादा ज्यादा डिस्टर्ब, कम कम स्टेबिलिटी. फिर हमारी सर्च शुरू हुई कि where am I heading, you know, मेरी लाइफ कहाँ है. एंड देन आई हैव रियली स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि सब कुछ तो हो रहा है, एवरी थिंग इज देयर, वेरी गुड हस्बैंड, वेरी गुड वाइफ, दोनों वर्किंग, एक्सीलेंट सैलरी पैकेज घर आ रहा है, 30-35 की एज में मेरा बहुत बड़ा ड्यूप्लेक्स बन चुका है, बाहर दोनों के लिए अलग अलग गाड़ियाँ खड़ी हैं, बच्चों के लिए अलग, वॉट मोर टू डू, नथिंग मोर टू डू. लेकिन फिर भी अंदर वो एक थोड़ा सा वैक्यूम है. एंड देन द क्वेश्चन हैज स्टार्टेड कि हैप्पीनेस कहाँ है, वेयर इज दैट, एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू डू थ्रू दिस प्रोग्राम, लुक फॉर इट वेयर इट इज एक्चुअली अवेलेबल.
1: शिवानी, मैंने अभी मेरी किसी से बात हो रही थी जिन्होंने कहा कि मैं खुशी से जुड़ी हुई बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे को इस बात से तो कुछ लेना देना नहीं कि मैं खुश हूं या सैड हूं, मुझे तो पहले सिचुएशंस को हैंडल करना है, क्योंकि सिचुएशंस भी इतनी तेजी से बदल रही हैं, हर पल कुछ नया हो रहा होता है, हर पल. जैसा आपने कहा कि चलो बच्चे तैयार तो हुए लेकिन वो बस ही नहीं है, अगेन यू नो लाइक उस वक्त डिसीजन एकदम से लेना. ये जो प्रॉब्लम है कि सिचुएशंस इतनी फास्ट हैं, या तो मैं अपनी हैप्पीनेस के बारे में सोचूं या मैं सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए अपनी अडैप्टेबिलिटी को करूं.
0: अच्छा, एक सेकंड, हैप्पीनेस को साइड पे रखते हैं. ये सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए फिजिकल भी स्ट्रेंथ चाहिए.
1: बिल्कुल
0: राइट. अगर मैं आज बीमार हूं तो देयर इज नो क्वेश्चन कि मैं उठकर गाड़ी लेकर जाऊं. डॉल, तो जब हम अपनी सब सिचुएशंस को हैंडल करते हैं लाइफ में, तो क्या हमारे माइंड में कभी ये क्वेश्चन मार्क उठता कि मैं अपने फिजिकल स्टैमिना को देखूं या सिचुएशन को हैंडल करूं? मुझे नहीं बॉदर करना फिजिकल स्टैमिना के बारे में, मुझे तो सारा कंसंट्रेशन सिचुएशन पर ही करना है. नो, मुझे ये पता है कि फिजिकल स्टैमिना से ही मैं सिचुएशंस को हैंडल करती हूँ. मैं ठीक ही नहीं हूँ तो वर्क जाएगा कौन, वर्क पे होगा क्या, वो तो सेकेंडरी, ऑफिस जाऊंगी कैसे. इसलिए सारे दिन के अंदर मैं ये जरूर ध्यान रखती हूँ कि मेरा शरीर ठीक ठाक चल रहा है,
1: भले आज के वक्त में,
0: हाँ, बट फिर भी थोड़ा सी अगेन कि आपको खाना खा तो लेना ना. आप चलो एक दिन मिस कर दोगे, दो दिन, लेकिन कितने दिन मिस करोगे? सपोज आप भागते भागते भी खा रहे और जंक भी खा रहे हो, लेकिन कितने दिन?
1: हाँ,
0: स्किप भी अगर आपने आज कर दिया कि आज डेडलाइन है, नेवर माइंड, एक दिन ना, दो दिन, चार दिन, उसके बाद यू विल ईट, बिकॉज यू नो कि चार दिन की लाइफ नहीं है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, एंड इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस जर्नी दिस बॉडी हैज टू बी फिट, अदरवाइज आई विल कोलैप्स नेक्स्ट डे. तो इसलिए हम कभी उसको सेग्रीगेट नहीं करते, अपने जीवन से अपनी फिजिकल हेल्थ को सेग्रीगेट नहीं करते. हम बहुत क्लियर हैं, हेल्थ है
1: तो काम कर
0: तो हम काम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल हेल्थ को हमने सेग्रीगेट कर दिया.
1: उसके बारे में बाद में सोचेंगे,
0: उसके बारे में बाद में देखेंगे. अगर उसको भी हम उतना ही प्रायोरिटी दे दें कि इमोशनल हेल्थ है तो जीवन की यात्रा में हम ठीक चल पाएंगे. जैसे आपने कहा कि ओहो मैं क्या करूं या मैं कोलैप्स हो गई, या एक है फिजिकल कोलैप्स और एक है जो इमोशनल कोलैप्स होते हैं. अब 5 मिनट पहले पता चला कि स्कूल छोड़ने जाना है, ओके, बट अगर मैं उस टाइम यू नो काम रहूं, स्टेबल रहूं, छोड़ने तो फिर भी जाना है, गाड़ी तो आपको फिर भी चलानी है, लेकिन किस स्टेट में चलाएंगे तो यू आर सेफर. सो अगर हम इमोशनल हेल्थ को भी उतना ही एम्फेसिस दें कि ये सब सिचुएशंस और इमोशनल हेल्थ ये सेपरेट नहीं है, इट इज अ पैकेज, कि अगर मैं इमोशनली हेल्दी हूं तो मैं इन सिचुएशंस को क्रॉस कर सकती हूँ. इंस्टेड ऑफ सेइंग लेट मी फर्स्ट फेस द सिचुएशंस then I will take care of my emotional health, physical health, emotional health, ये मेरा पैकेज है.
1: अभी तक तो हम, लेकिन शिवानी बहन यहाँ पे एक और बात आती है कि अभी तक तो हम इसी बात को बड़ी मुश्किल से समझ रहे थे. यू नो पार्क में जॉगिंग शुरू की थी या वॉक शुरू किया था कि फिजिकल हेल्थ इज नीडेड. यू नो ये भी एक हम स्ट्रेस की तरह ले रहे थे, इन द सेंस कि एक रियलाइजेशन होना शुरू हुआ था मैक्सिमम लोगों को, अब हो रहा है कि क्या मैं खा रही हूँ, किस वक्त पे खा रही हूँ और कितनी वॉक कर रही हूँ, कितनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो जरूरी है.
0: Do you know something? Why we are having to take so much care of physical health today? क्यों इतना ध्यान रखने जा रहे? हमें बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट वन जनरेशन पीछे. सिर्फ अपने पेरेंट्स को देखना है, कोई जॉगिंग नहीं करने गया मेरे पेरेंट्स में से, किसी ने मिनरल वाटर नहीं पिया सारा दिन में, किसी कोई इतना डाइट कॉन्शियस नहीं था, नॉर्मल खाना बनता था, नॉर्मल सब लोग खाते थे. आज इतना ज्यादा क्यों ध्यान रखना पड़ रहा है फिजिकल हेल्थ पे? क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस इतना ज्यादा है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम शरीर के साथ चली ही जाती है. तो जो रूट है उसको नहीं ध्यान रखा, रूट की वजह से फिर जो क्रिएट हो रही है सारी प्रॉब्लम्स, अगर रूट पर भी ध्यान रख लें तो यहाँ इतना ज्यादा एम्फेसिस, इतना ज्यादा एफर्ट करना ही नहीं पड़ेगा. अब आज आप जॉगिंग करने तो जा रहे हो या दो लेडी, हाँ फास्ट फास्ट फास्ट, अच्छा फिर उसमें भी अगर दो तीन लोग इकट्ठे जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग तो कर रहे हैं, डिस्कशन की क्वालिटी क्या है?
1: कंटिन्यू, आई टेल यू, यू नो दिस इज अमेजिंग.
0: वॉकिंग कर रहे हैं सेहत के लिए, लेकिन अगर इतनी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होंगी वो चलते चलते, तो नेगेटिव थॉट्स सिर्फ माइंड पर नहीं ना, उसका इफेक्ट बॉडी पर भी है. तो हम फिजिकल हेल्थ इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन जब तक हम ये नहीं रियलाइज करेंगे कि फिजिकल हेल्थ पे भी हमारी इमोशनल हेल्थ का बहुत डीप इम्पैक्ट है, दोनों का ध्यान रखेंगे, देन वी विल गेट दैट राइट, जिसको हम कहेंगे ना हेल्दी बींग, पूरी एक होलसम प्रोडक्ट हेल्दी होगा. आप एक फैक्टर पे ध्यान दो और दूसरे फैक्टर को और ही निग्लेक्ट करते जाओ, निग्लेक्ट करते जाओ,
1: उसके ऊपर और स्ट्रेस क्रिएट करे जा रहे हो एक्चुअली,
0: तो फिर ये साइड पे क्या रिजल्ट निकलेगा? मेहनत ज्यादा और फिर भी रिजल्ट कम. आज डॉक्टर्स के पास इतने यंग प्रोफेशनल, स्पेशली यू नो जो प्रोफेशनल हमारे यूथ हैं, 30s के एज ग्रुप के अंदर है, कहेंगे मेरी लाइफस्टाइल ठीक है, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग, वेजिटेरियन फूड भी कई लोग ले रहे हैं, जॉगिंग मैं रोज जाता हूँ, फिर भी 30 के एज में आकर ये इलनेस क्यों? क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर पर ध्यान नहीं रखा, बाकी सब चीजों पर ध्यान रखा, ये नहीं रखा कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है सारा दिन. उसको तो पूरी तरह से इग्नोर कर दिया या फिर उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट ही कर दिया, इसका कुछ नहीं हो सकता. टेंशन ये सब तो चलने ही वाला है, इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, जो बीमारियां हो रही हैं, उनका मैं इलाज करवा सकता हूँ.
1: सो व्हाट इज एक्चुअली मेंट बाय मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ?
0: हैप्पीनेस
1: इज इमोशनल हेल्थ,
0: इज मेंटली हेल्दी. और जिस क्षण आप खुशी का अनुभव नहीं कर रहे हैं उस समय
1: आप अनहेल्दी हैं, मेंटली अनहेल्दी हैं.
0: तो ना अब आप अपना दिन का इंडेक्स चेक कर लेना कि कैसा बीत रहा है सारा दिन. क्योंकि क्यों, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? जब आप नॉर्मल फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील, सपोज आई एम वॉकिंग, लेकिन वॉक करते करते मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है पैर में, एंकल में या नी में, लेकिन मैं उस दर्द के साथ भी तो चल ही लेती हूँ ना, चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं. कोई कहे डॉक्टर को दिखाओ, हाँ दिखा लेंगे, दिखा लेंगे, टाइम नहीं है. धीरे धीरे मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ उस दर्द के साथ ही चलना. यू नो आई से आई डोंट हैव टाइम टू ट्रीट माई सेल्फ, या कौन जाए फिर डॉक्टर के पास. ओके, सो आई स्टार्ट वॉकिंग विद दैट पेन. So I accept that physical pain
1: as a part of my life. Yes.
0: And I say, it's okay, I will accept that. Lekin, is that health? Is that a healthy foot, a healthy knee? Nahin. Maine us pain ko swikar kar diya, usko hi normal keh diya, lekin wo normal नहीं है.
1: उस वक्त हम अपने आप को क्या कहते हैं कि कहीं नेचुरली ठीक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा,
0: अपने आप ठीक हो जाएगा. सेम थिंग विद द स्टेट ऑफ माइंड. अच्छा दर्द है, टेंशन है, ये तो पार्ट है, चलते जाओ, घसीटते जाओ, इसको स्वीकार कर लिया. सभी को तो है, सिर्फ मुझे थोड़ी है. तो जो चीज सभी को है, यू नो व्हेन वी डू वर्कशॉप्स एंड ऑल, 100 लोग बैठे हो या 5000 लोग बैठे हो, जस्ट आस्क देम वन सिंपल क्वेश्चन, आपको टेंशन होती है? यू वोंट बिलीव, एक भी वर्कशॉप में आई हैव नॉट सीन कि कोई एक खड़े होकर कहे कि हाँ मुझे होती है. यूनानिमसली एवरीवन विल से सभी को होती है.
1: हाँ.
0: And it's so beautiful to see the way everyone is saying सभी को होती
1: मतलब है. और जवाब ऐसे आते हैं कि कौन है जिसको नहीं होती है.
0: एंड अगर कोई कहे भी दे ना इंडिविजुअली तो नो वन विल एक्सेप्ट. तो जैसे ही हमने कहा सभी को होती है, इट मेक्स मी फील अच्छा ठीक है, तुम अजीब नहीं हो, ये बीमारी तो आजकल सभी को लगी है. और सभी को लगी होने से मैं उसको और स्वीकार कर लेती हूँ कि ये तो, और फिर हमने उसको ही नेचुरल उस. तो अगर हम अपने दर्द को शुरू होते ही चेक कर ले तो फिर हम क्या होंगे, इमोशनली अपना ध्यान रख सकेंगे. लेकिन दर्द है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, टेंशन हो रही है, चिड़चिड़ापन थोड़ा सा बढ़ता गया गुस्से में, हमने कहा कोई बात नहीं, चलते जाओ, चलते जाओ, टाइम नहीं है रुककर अपना ध्यान रखने के लिए. तो कैन वी कॉल दैट हेल्दी? Can you call yourself healthy then?
1: No, yes, you know, because it's very,
0: natural
1: very irritating. Nahin
0: hai, yeah. Natural nahin hai, comfortable nahin hai. Andar ek takleef thodi si wo create kar raha hai. To emotional health meri kis level par hai aaj, ye puchne ke liye mujhe kisi aur ke paas nahin jana hai.
1: Actually, aur usse hum kuch der ke liye, jaise dard ko, kuch der ke liye bhool jate hai jab hum kisi aur cheez mein hote hai. But dard actually fir se spurt out ho jati hai.
0: Chahta hai. To hum koi na koi situations ya koi na koi aur tarike dhoondte hai, jisse hum apne mind ko usse deviate kar le. Similarly, emotional health mein bhi, ki haan hai, chalo kuch aisa kar le, jisse main thodi der is baat ko, भूल जाऊं, शॉपिंग चले जाऊं, किसी से थोड़ी देर फोन पर बात कर लूं, तो मैं अपने खालीपन को थोड़ी देर भूल जाऊं, लेकिन गया तो नहीं ना, सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए आपने साइड ट्रैक कर दिया, है अभी भी वहीं, सो कहीं ना कहीं बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ दैट वी आर ऑल लीडिंग, बट समवेयर वी आर नॉट एंजॉयिंग द ब्यूटी ऑफ इट, जस्ट बिकॉज हम सिर्फ एक डायमेंशन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, बाकी तो सबकी तरफ हमारा बहुत अच्छा ध्यान है, लेकिन जो फंडामेंटल डायमेंशन है जहां से सारा कुछ शुरू होता है, यू नो इट्स लाइक अ ट्री, सीड है, सीड की क्वालिटी को हम नहीं ध्यान रख रहे, हाँ बाकी ट्रंक बहुत अच्छा है, ब्रांचेस बहुत अच्छी हैं, लीव्स फ्रूट्स सब हम सहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन सीड की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हर टाइम कुछ ना कुछ
1: कमी तो कमी रह रही है, तभी तो हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छा है, हम उसको अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं,
0: क्योंकि इधर नहीं प्रयास कर रहे ना, हम सीड पर पानी नहीं डाल रहे, तो हर एक पत्ते पर पानी डाल रहे हैं, हर एक फल पर पानी डाल रहे हैं, यहाँ डालते यहाँ तक पहुँचते ये सूख जाता, कहेगा बच्चों का ध्यान रखो या ऑफिस का करो, इनको खुश करो या इनको खुश करो, एफर्ट बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि एक कमजोर मन बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, कमजोर मन अपने को ठीक नहीं कर रहा लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा है, सपोज आज हम 10 घंटा काम करते लेकिन कल हम बीमार हैं फिजिकली और हम 10 घंटा काम करें, दोनों दिन में फर्क होगा या नहीं होगा, फर्क होगा, एक तो एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है कर भी लेंगे लेकिन उस पूरे दिन को हम उतना ज्यादा इंजॉय नहीं करेंगे जैसे बाकी दिन को करते, इसलिए हम क्या करते हैं, आज तबीयत ठीक नहीं है ना, थोड़ा सा गैप लो, इसको ठीक करो ताकि फिर नेक्स्ट डे इट विल बी वेरी वेरी गुड, सिमिलरली अगर इसकी भी हेल्थ पर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो फिर हमें ड्रैग नहीं करना पड़ेगा अपने जीवन को, कर रहे हैं लेकिन बीमारी की हालत में कर रहे हैं, एंड तब सब कुछ करते हुए भी एक तो मेहनत लग रही है, एफर्ट लग रहा है, एंड समवेयर दैट फन और दैट एंजॉयमेंट इन लाइफ इज नॉट देयर, फिर एंजॉयमेंट के लिए और कुछ करना पड़ता है,
1: ओह यस
0: बिकॉज़ आई एम नॉट एंजॉयिंग लाइफ,
1: ओह यस वेरी ट्रू, और वो एंजॉयमेंट के लिए हम क्या क्या करते हैं उस पर बात हम जरूर करेंगे, लेकिन आज जो आप बात समझ में आ रही है शिवानी बहन वो ये कि इनफैक्ट जहाँ आपने फिजिकल अनहेल्दीनेस की बात की तो उसको ब्रेक हम सब देते हैं, यू नो आई नो वर्कहोलिक्स जो हैं वो कहते हैं एक किसी दिन गायब भी हो जाएंगे वो, दैट वी वांटेड टू टेक अ ब्रेक, यू नो तो उनको फोन पर संपर्क करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज दे सेड वी कुडंट फिजिकली गेट अप, यू नो
0: तो आप देखो ना कि वो किस लेवल तक पहुंच जाते हैं एकदम, और फिर उनको टोटली डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, तो दोनों चीजें एक्चुअली बैलेंस्ड नहीं है, जो बहुत ज्यादा कर रहे थे वो भी बैलेंस्ड नहीं था, फिर एकदम से डिस्कनेक्ट कर देते हैं वो भी बैलेंस नहीं है, मतलब सडनली सबसे कट ऑफ हो जाते हैं, तो फिर वो एक्सट्रीम पर अपने जीवन को जैसे चला रहे हैं कि या तो बहुत ज्यादा उसके अंदर घुस गए हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और फिर वो कोलैप्स हो जाते हैं, तो फिर एकदम से उससे विड्रॉ करना पड़ता है।
1: आई थिंक यू द वे यू हैव पुट इट एक्चुअली इज वेरी राइट, बिकॉज अभी तक हम ये मानते थे कि ये राइट तरीका है, क्योंकि आप काम करो तो खूब दबा के काम करो और जब रेस्ट लो तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट होके करो,
0: वो हम ये मानते मशीन से भी जब काम करवाते हो, चलो ह्यूमन बींग तो छोड़ो, एक मशीन से भी अगर काम करवाते हो तो मशीन ठीक चल रही होगी तब तो वो आपका रिजल्ट देगी, वो कर कर कर कर करके आप उससे फिर भी आप बोलो नहीं आई विल नॉट स्टॉप टू ऑयल इट, आई विल नॉट स्टॉप टू मेंटेन इट, कितने दिन फिर वो एक दिन एकदम बंद हो जाएगी और फिर उस दिन कहेंगे आज तो ये मशीन काम ही नहीं कर रही, जब वो मशीन ने थोड़ा सा ही सिग्नल देना शुरू किया था तभी अगर उसको ऑयल कर देते या ठीक कर देते, यू वुडंट कम टू दैट वन डे जिस दिन वो काम करना बंद कर देगी।
1: जब मैं काम कर रहा हूँ, चाहे मैं प्रोफेशन में हूँ, चाहे मैं अपने बच्चों की केयर कर रही हूँ, चाहे मैं मतलब कुछ भी जिस भी पर्पस में मैं हूँ, उस वक्त मैं अपनी फिजिकल या मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर रह सकती हूँ।
0: ध्यान रखना, यू नो आज का जैसे मेडिटेशन और ये सब बहुत अपकमिंग हो गया, तो बहुत लोग कहते हैं ध्यान करना है, हमें ध्यान करना है, ऐसे ध्यान करना बहुत डिफिकल्ट है, उसको छोड़ो, ध्यान रखना है सिर्फ, यू नो, ध्यान करना तो ऐसे फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेज लगती है कि एकदम थॉटलेस हो जाएंगे,
1: मुझे टाइम सोचना पड़ेगा,
0: सारा दिन में सिर्फ अपना ध्यान रखना है. सबका ध्यान रख लेते हो, ऑफिस का, घर का, परिवार का, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी का, अपने मोबाइल का, मतलब इवन एक अच्छी कार आपने लिए, आप याद रखते हो कि हर महीने इस डेट पर इसको सर्विसिंग के लिए भेजना है. कितने महीने नहीं भेजेंगे और वो कितने महीने चलेगी बिना सर्विसिंग के, वी नो. सो इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ द कार एवरी मंथ आई विल सेंड इट फॉर सर्विसिंग. एवरीथिंग आई टेक केयर ऑफ, देन व्हाई डू आई जस्ट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ माय माइंड. That's all. I take care of everything. इसलिए ध्यान रखना हम सबको आता है. हमें कहीं से सीखने नहीं जाना, we don't need to do anything. हमें कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिर्फ हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है ये. किसी से भी आप पूछो किस किस का ध्यान रखते हो सारा दिन, फैमिली, ऑफिस, घर, यू नो, बच्चे, परिवार, अपना, कहेंगे हाँ हम शरीर का ध्यान रखते हैं ना, इसको साफ रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं. तो अपना भी जब कहेंगे तो दे विल ओनली थिंक ऑफ कि इस बॉडी का ध्यान रखना, मन का ध्यान रखना.
1: और हम कितनी बार कहते हैं हमारा ध्यान तो वो रखेगा ना ऊपर.
0: हाँ, पर जब हम ऊपर वाले के ऊपर भी डालते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम उसकी भी हेल्प इसी में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी सिचुएशंस में हमारा ध्यान रखेगा. मेरे मन का ध्यान, मेरी क्वालिटी ऑफ थॉट्स और फीलिंग्स का ध्यान, उसमें भी उसको तो नहीं याद करते बिल्कुल भी. आज आप सत्संग में जाओ, प्रवचन में जाओ, कुछ भी करो, वेरेवर, मंदिर जाओ, जहाँ भी जाओ, तो किस लिए जाते हैं? जाते हैं ताकि थोड़ी देर जाकर अच्छा लगेगा, पुण्य का खाता मेरा जमा होगा, मेरा वीक का अच्छा काम वाला कोटा हो जाएगा. हाउ मेनी ऑफ अस आर गोइंग विद द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग ऑन माई सेल्फ, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, अपने थॉट्स, अपने संस्कारों के ऊपर काम करने के लिए हम सत्संग में जाते हैं क्या? हम सिर्फ वहाँ जाते हैं, एक घंटा, दो घंटा बैठते हैं, बहुत अच्छी बातें सुनते हैं, सुनते सुनते यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, दैट्स ऑल. एंड फिर ये फ्राइडे से नेक्स्ट फ्राइडे तक
1: भूल जाते
0: हैं, सेम लाइफ, सेम वैसे ही डिस्टर्बेंस, केओस, क्राइसिस, एवरीथिंग. फिर नेक्स्ट फ्राइडे गए, दो घंटा बैठे, किया. तो एम ऑब्जेक्टिव वहां भी ये नहीं है कि अपने मन का ध्यान रखना. तो कहीं ना कहीं सब चीजों का ध्यान रखते रखते इसको एक प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना है, क्योंकि सबका ध्यान रखने वाला ये मन है.
1: हाँ.
0: ये शरीर भी नहीं है, ये शरीर भी आज बीमार थोड़ा होगा तो मैं चला लूंगी अगर मन खुश है. लेकिन सब कुछ ठीक होते भी अगर मैं इरिटेट होती गई, यू नो, डिस्टर्ब होती गई, आई डोंट नो हाउ एफिशिएंट आई एम एट एवरीथिंग.
1: मेरे मन को खुश करने वाले तो दूसरे हैं, मेरा ध्यान रखने वाले तो दूसरे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, मेरे कलीग्स हैं, वो ध्यान रखेंगे मेरा, मेरे मन का तो कोई ध्यान रखेगा.
0: इसीलिए तो हाल फिर ऐसा हो गया ना आज, क्योंकि दूसरों पे डिपेंड किया. मेरे परिवार का ध्यान कौन रखता?
1: मैं
0: रखती हूँ. मेरे घर का ध्यान कौन रखता?
1: मैं
0: रखती हूँ. तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? मैं ही रखूंगी ना.
1: अपना ध्यान मैं कैसे रखूंगी, ये एक बात है जो हमें ये सीखनी
0: पड़ेगी. अपना में भी प्लीज लेट्स रिमेम्बर मन का, क्योंकि अपना कहते भी सिर्फ नहीं तो फोकस आता कि हाँ इस शरीर का ध्यान तो हम रखते हैं ना, एक्चुअली सारा दिन तो इस शरीर के लिए ही चल रहा है, यू नो, शरीर का कंफर्ट, शरीर का भोजन, शरीर के लिए गाड़ी, शरीर के लिए मकान, सब कुछ तो शरीर के लिए हो रहा है, मन का ध्यान. और एक्चुअली जब अपने मन का ध्यान नहीं रख पाते तो किसी और के मन का ध्यान भी नहीं रख पाएंगे.
1: सच में देखें तो हाँ.
0: परिवार को भी अगर कहें, क्योंकि हम कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार का ध्यान रखना, परिवार के ध्यान में भी हम सिर्फ शरीर का ध्यान रख रहे हैं. बेस्ट स्कूल, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट ड्रेसिंग,
1: बेस्ट म्यूजिक
0: टॉयज, बेस्ट ऑल दिस. इमोशनल हेल्थ, बच्चों की इमोशनल हेल्थ का कौन ध्यान रख रहा है? कोई नहीं.
1: तो हमें पता ही नहीं ना. यस,
0: क्योंकि अपने ऊपर जो चीज नहीं हम प्रायोरिटाइज करेंगे. और मेन चीज ये है कि जहां बाकी ध्यान रखने की बात आती तो हम बिना अपना ध्यान रखे भी मैं आपका ध्यान रख सकती हूँ. सपोज मेरे पास आज दो ही फुलके पड़े हैं, दो ही चपाती पड़ी है, मैं बिना खाए आपको खिला सकती हूँ, तो इट्स ओके. मैं अपने लिए नए कपड़े नहीं लूंगी, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ले सकती हूँ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बिना खुश रहे और उनको खुशी नहीं दे सकते. दिस इज वन थिंग विच आई कैन नॉट गिव एनी वन एल्स टिल आई हैव इट.
1: गुड.
0: सो इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट
1: अंडरलाइन
0: कि पहले मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिकली औरों का ध्यान हो जाएगा. इफ आई एम इमोशनली स्ट्रांग, ऑटोमेटिकली मेरे बच्चे इमोशनली स्ट्रांग होंगे. बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. लेकिन मैं ही सारा दिन डिस्टर्ब हूँ, मैं ही सारा दिन चिल्ला रही हूँ, मैं ही सारा दिन उनको गुस्सा कर रही हूँ, मेरी सेल्फ एस्टीम लो है तो उनकी सेल्फ एस्टीम
1: लो होती जाएगी. यस, आई थिंक यू वेरी राइट. और इस पर हमें बात, इस पर ध्यान देने की जरूरत है. जैसे शिवानी, आज की जो बातचीत हमने की है, एक अंडरलाइंड थिंग कि मैं सबका ध्यान बाकी चीजों में रख सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने अपना ध्यान, अपने मन का ध्यान नहीं रखा है तो किसी का भी ध्यान नहीं रख पाऊंगी. आई थिंक वेयर वी हैव स्टार्टेड, आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल बिकॉज समवेयर दिस नीडेड टू बी यू नो अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच. ओम शांति. अगर हम देखें तो सचमुच में हम ध्यान सबका रखते हुए अपना नहीं रख रहे हैं. क्यों नहीं रख रहे हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. कैसे रखना है इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत आसान है, हमें ध्यान रखना बेसिकली आता है, लेकिन कैसे रखना है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज जो हमें समझनी है, याद रखनी है, वो ये कि अगर मैंने अपने मन का ध्यान नहीं रखा, मैं किसी का ध्यान नहीं रख सकती, किसी के भी इमोशंस का, किसी के भी जो पूरे एस्पेक्ट्स हैं उनका ध्यान नहीं रख पाऊंगी. तो यहीं से आज शुरुआत करते हैं. हो सकता है आपके मन में कोई बात उठी हो, आपका हम स्वागत करते हैं. ये एक ऐसा मंच है जिस पर जीवन से जुड़ा कोई एस्पेक्ट है, कहीं कोई आपको लग रहा है कि मुझे हैप्पीनेस के बारे में ये बात करनी है, ध्यान रखने की बात करनी है, तो किस बात पर ध्यान रखना चाहते हैं, इस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर हैं 01244-266-7000, 99993-44-555, 99993-44-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज शुरू कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स को जानने की. जी हाँ, खुशी का जो आंकना है वो कितना दिन भर में ऊपर नीचे होता है, वो कैसे रहेगा एक स्टेबल लेवल पर, इस बात का प्रयास हम करेंगे इस पूरी श्रृंखला में. आज शुरुआत है, आपसे अब विदा लेते हैं, लेकिन आने वाली कड़ियों में बहुत सी बातें जानेंगे. ओम शांति.

दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो 1 भावन 90.8 FM, ऑलवेज हैड टची। आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग, आपलं खानदेश, आपली माणसं।